मन्ना दी की यानी मन्ना दी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे मस्ती भरा है शमा फ्रॉम द मूवी परवरिश से हमने पेश किए हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा।

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे अजी उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा आरजू है, फिल्म का नाम। लता जी आपको सुनाने वाले थे और म्यूजिक दिए हैं शंकर जयकिशन जी। उमरा है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं। बॉम्बे का बाबू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में साथी न कोई मंजिल।

अभी आप सुन रहे थे साथी ना कोई मंजिल, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। बॉम्बे का बाबू है फिल्म का नाम। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दूल्हा दुल्हन।

जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दूल्हा दुल्हन से हमने पेश किए हैं वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा एक बार फिर से मुकेश प्रोग्राम में आ रहे।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, द माइटी मुकेश जी की आवाज में। दीवाना हुआ बादल कश्मीर की कली है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

दीवाना हुआ बादल। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कश्मीर की कली से मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। छलके तेरी आंखों से शराब और सियारा, आरशू है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

छलके तेरी आंखों से शराब और सियारा। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं दीवाने का नाम तो पूछो। मोहम्मद रफी जी फ्रॉम द मूवी एन इवनिंग इन

0: मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे दीवाने का नाम तो पूछो। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी एन इवनिंग इन पेरिस से अफू खुदा।
1: अफू खुदा।

फूल खिले है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हमको तुम पे प्यार आया, आँखों में कयामत के काजल। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी किस्मत।

आंखों में कयामत के काजल अभी आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी किस्मत से। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। और जरा साहब देखे तो फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। जाने अनजाने है फिल्म का नाम, और लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जी हाँ सुनने वालों, मेरे हमदम मेरे दोस्त है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं ना जा कहीं अब ना जा दिल के सिवा।

फ्रॉम द मूवी मेरे हमदम मेरे दोस्त से अभी आप सुन रहे थे। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

अभी आप सुन रहे थे दमायती मुकेश जी की आवाज़ में वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। सुनने वालों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़िंदगी चार दिन की है, दो दिन तुम्हारे हक में, दो दिन तुम्हारे खिलाफ। जब तुम्हारे हक में हो तो गुरूर मत करना, जब तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र करना। मैं पल पल का शायर हूँ, फ्रॉम द मूवी कभी कभी से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे मैं पल दो पर का शायर हूँ किशोर डा प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों और गीत का बोल है कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। फ्रॉम द मूवी लावा से आप सुनेंगे किशोर डा की आवाज़ में।

किशोरडा प्रोग्राम में आपको सुनाए हैं, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे के इस्तेमाल करने के लिए नहीं।

मुझे आवाज़ न देना। ओ बेदर्द ज़माने, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, जाता हूँ मुझे अब ना बुलाना। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी दादी माँ से आप सुनेंगे। लेकिन गीत से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। कुदरत का कानून है, दुनिया में तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते।

अभी आप सुन रहे थे चाहता हूँ मैं मुझे अब ना बुलाना। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए ये गीत हो जाए।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखे, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब दे देता है। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन।

अभी आप सुन रहे थे ए जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। कुछ मजबूरियां रिश्तों को ख़त्म कर देती है, कुछ मजबूरियां रिश्तों को ख़त्म कर देती है, और कुछ रिश्ते मजबूरियों को।

आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनती रहोगी तो लोग भूलने यानी तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। बनता परवर, थाम लो जिगर।

ये चांद सा रोशन चेहरा भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। रिश्ते छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते ख़राब हो जाया करते हैं। लता जी आपको सुनाने वाले हैं दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या।

दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में। सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, चलिए मिलकर फ्रॉम द मूवी कठपुतली से आप सुनेंगे, जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया।

जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोवोगी तुम तो ना रोएगी दुनिया। किशोर डा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किए हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। फ्रॉम द मूवी पिया का घर से आप सुनेंगे।

इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। पिया का घर है फिल्म का नाम, किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी।

महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर, यानी ये रात फिर नहीं आएगी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, नर्तक ये है फिल्म का नाम, आशा भोसले जी के साथ में। सरासा हम देखे, जी हाँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर आपको सुनाने वाले हैं

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नर्कतिस यानी नर्तकी से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

प्यारे, मैं तुम्हें क्यों मना रही हूँ, तुम्हें क्यों बुला रही हूँ, तेरी बार बार मिन्नतें क्यों कर रही हूँ। तूने अपने नैनों के माध्यम से जो मुझे पिलाई, उसका नशा इतना बढ़ गया कि मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई।

आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आकाशवाणी रेडियो पावन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। हर रोज की तरह आज भी

यहाँ से आरंभ करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा के साथ अरवो भी पेश किया जाता है। देनहाख देनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोती

देनाह के रहने वाली देनाह के रहने वाली श्रीमती श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से शुभ दिवस कहते हुए सुंदर सा हनुमान चालीसा यहाँ से हम मिलकर और श्रवण

श्री नाम अली फोनो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम।

श्री नाम अली फोनो मैन का नाम हूँ इंदिरा गांधी व्यक्ति श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से ये खूबसूरत दिवस में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए ये सुंदर सा भजन स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में पेश किया गया। हमें इंतराज लेत श्रीमती लेना बाबू राम जी की तरफ से

सबसे बड़का कानून श्री भगवान का घर है। वहाँ पे देर नहीं, अंधेर नहीं, बस न्याय होता है। जो जैसे करता है वैसे ही उनको मिलता है। भगवान के साथ ऐसे ही हुआ है कि वो सब धरती पर आकर और मनुष्य जन्म में हमको भी दिखाई है। तो सोचो, हम मनुष्य जो है, हम कब बच पाएंगे? सुंदर सा भजन रफी जी की आवाज में पेश किया गया है।

राम ढाई अक्षर का ये नाम, जय जय बोलो जय जय श्री राम, पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों। देन हाँ, लेस कफेन फोर पार्क से बाव एन ओनर हाउस बद्रेव, बाव एन ओनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी। दनाह मकाइसरत नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनखिन आलखमेन, फरेनखिन आलखमेन हिंदू ओंदरवेस के तरफ से।

भगवान, इधर भगवान है उधर भगवान, आप जहाँ बस नजर उतार कर देखो वही भगवान है। भगवान देखने से नहीं बल्कि महसूस भी कर सकते हो आप। पेश किया गया है दना अखमका इसरात नंबर 6 से हिंदू पास स्कूल फाहुन फरेनखिंग अलखमेन हिंदू ऑंडरवेस नीदरलैंड की तरफ से।

तेरे हाल पर भगवान की नजर है। Nagelys gevind voor Park se Sondag groothandel. Sondag groothandel en groente en fruit. Malik in Kahe Sriman Parshuram Mohanlal or Sriman Parshulal Mohanlal

और वही प्रेम जो आप अपने मन में बसा ले तो ईश्वर आपके मन में आप में बस जाएगा। सुंदर सा भजन पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, देना खेक नहीं तो श्रत नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरुबीन के निर्देश में है। रोटरडैम होगफ्लिट टेक्सस वेग से, रोटरडैम होगफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से, साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मकरसराज सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से हम यहाँ श्रवण करेंगे। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आपके लिए लाइफ एंड डायरेक्ट।

दिल छू जाने वाले ये दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा भजन हमने यहाँ मिलकर और श्रवण की है। पेश किया गया है रोटरडम हुफली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति पंडित सुभाष महावीर ना माफ कीजिएगा मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है। सभी को सुप्रभात कहता है। Den Haag Lijsten Veen Voorpark से आनंद अर्जुन शर्मा ग्रोथ हैंडल बेवी

ये जमी तेरा ही आसमान तेरा ही मैं भी हूँ, ये सब तेरा, ये तन मन सभी जो है यही आप ही का है। बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए, आपका तमाम उलझने, आपका तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा।

सुंदर सा भजन पेश किया गया है देन अखिलेश कफीन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खुद हैंडल बेफेल, इनका मालिक खुद है आनंद अर्जुन शर्मा। फाहोन रेडियो की डायरेक्टरी स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

0: Costa Rica Mangiare.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी, जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते, हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग, घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतों, अपनी घटिया हरकतें दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानू या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

उसने पराए घर में जाके अपनी सेज सजाई है। अब वो मेरे साथ नहीं है मेरा साथ निभाने को, मेरे आंसू साथ है मेरे, उसके साथ खुदाई है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दे कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आंखों को, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एनखांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कॉइंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। हेडब्रेंड अलेमा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट और नेगेटिव एनर्जी। ये सब बात आपको बता दिया गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार।

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है, तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेदाख दुच, इस दैट वेल खुद इज द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्प गुड फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड ग्लूकोज का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. Aur waise hum Suriname mein bhi middag dutje lete.

तुम्हारी है सुनाए आपको लता और रफी जी एक बार फिर, और वही मशहूर फिल्म मैं चुप रहूंगी से निकाला गया यह सुंदर सा गीत। और सुनने वालों, आप हो जो गीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत जो सेलेक्ट करके रखी है

कितना रोमांटिक, कितना प्यार भरे ये सुंदर सा गीत है जो आपने सुने। जी चाहता है कि बस सुनते ही जा, सुनते ही जा, सुनते ही जा, जी नहीं भरता ऐसे ही सदाबहार गीतों जो आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट करके रखी गई है, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तैयार करते। हे संगीत और संगीत के प्रेमी, तो यहाँ से लेकर चलते हैं एक बार फिर ऐसे ही सुंदर गीत, और इस बार है मन्ना दे लता जी के साथ में।

आज ही जी लो, आज ही जी लो खुल कर यारो, आज ही जी लो खुल कर यारो, कौन जाने कल की क्या कहानी, हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ, फिर न होगी ये दिन सुहानी।

स्वागत है, स्वागत है आप सबके एक बार फिर। स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी नमस्कार। यही आशा उम्मीद है आप यहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आप सभी को। ये पल, ये समय, ये आपको मुबारक हो, बधाई हो। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज और आज कभी जाता नहीं। कहती हूँ भी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कि इस दुनिया में जीना हो तो

अब बंगले के पीछे सुना दी हमको लता जी। फिल्म का नाम जैसे मैंने बताई है, फिल्म का नाम समाधि। नहीं खन तीन तुए से फन तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है।

भी आपका गीत यहाँ से मैं चला दे रही चलाती हूँ। प्यार में कभी कभी शैलेंद्र जी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम चलते चलते।

फिर हम चलते चलते से आपके लिए यहाँ से हमने सुने हैं। शैलेंद्र जी और लता जी के आवाज़ में

0: महेंद्र कपूर हिट्स सॉन्ग हमरा से सुना दिया कि नीले गगन के तले।
1: ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति नीच। ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए, नीच ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है, कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए सत्य की खोज करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता जन्म पर आधारित भेदभाव को सिरे से नकारता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात समाज का विभाजन गुणों और

0: कर्मों के आधार पर हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। शास्त्रों के अनुसार नीच वह नहीं है जो किसी विशेष परिवार में पैदा हुआ है, बल्कि नीच वह है जिसकी प्रवृत्तियां तामसिक हैं, यानी वह जो अज्ञान, क्रोध और हिंसा में लिप्त है। महान संतों और स्मृतियों के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसे उच्च या निम्न बनाते हैं। शास्त्र चार प्रकार के लोगों को निम्न श्रेणी में रखते हैं। पहला, कृतघ्न, जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता। दूसरा, अधर्मी, जो जानबूझकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। तीसरा, अहंकारी, जो सत्ता या धन के मद में अंधे होकर मानवता का अपमान करता है। चौथा, असत्यवादी, जिसकी वाणी और विचार में छल हो। यहां तक कि महान ऋषि वाल्मीकि और वेदव्यास के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि जन्म गौण है और ज्ञान सर्वोपरि। सवाल उठता है कि फिर समाज में यह भेदभाव आया कहां से? इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों और मध्यकाल के दौरान लचीली वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने धर्म की गलत व्याख्या की और नीच शब्द को जन्म से जोड़ दिया। यह धर्म की नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की विकृति थी। आध्यात्मिक रूप से हर जीव के भीतर एक ही आत्मा का वास है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यदि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो कोई नीच कैसे हो सकता है? वास्तव में नीच केवल हमारे विचार और संस्कार हो सकते हैं, शरीर या कुल नहीं। आज के युग में नीच शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अधर्म भी है। हिंदू धर्म की असली सीख वसुधैव कुटुंबकम में है। श्रेष्ठ वह है जिसका मन शुद्ध है और जिसके कर्म समाज के कल्याण के लिए हैं। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। नीच, ये शब्द हमारे
1: वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
2: राजा।

0: Johnny Mira Nam. Ji ha, Johnny Mira Nam ne khantin seven tak me picturize he. Hema Malini Devanand isme star cast he.
1: Ye mautam bheega bheega hai, hawa bhi zyada zyada hai.
0: जी हाँ, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
2: हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब ये किसी खतरे का सामना करता है तो कभी कभी एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुखार आखिर होता क्या है और ये क्यों आता है? असल में बुखार हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई बाहरी हमलावर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। ये हमलावर पदार्थ, जिन्हें पायरोजन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को संकेत भेजते हैं जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पायरोजन के प्रभाव से हाइपोथैलेमस शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर एक नए ऊंचे स्तर पर सेट कर देता है। जब यह थर्मोस्टेट ऊपर सेट होता है तो शरीर को ऐसा लगता है जैसे वह ठंडा है, भले ही शरीर का तापमान बढ़ रहा हो। इसी कारण हमें ठंड लगती है, कंपकंपी होती है और शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। यह बढ़ा हुआ तापमान कई बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रतिकूल वातावरण बना देता है जिससे उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उनसे लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन फिर सवाल आता है, बुखार की दवाइयां कैसे काम करती हैं, जैसे पैरासिटामोल या अन्य एंटीपायरेटिक दवाएं? ये दवाएं मस्तिष्क में PGE2 नामक रसायन के उत्पादन को कम कर देती हैं। यही रसायन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को ऊपर सेट करता है। जब PGE2 कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है और हमें राहत महसूस होती है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है संक्रमण, जैसे सर्दी, फ्लू, गले का संक्रमण या पेट का संक्रमण। लेकिन कभी कभी सूजन से जुड़ी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ दवाएं, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि या हीट स्ट्रोक भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसलिए बुखार सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये अक्सर एक संकेत होता है कि हमारा शरीर किसी चुनौती से लड़ रहा है। एक तरह से बुखार हमारे शरीर का रक्षक है।

0: लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ में ये मौसम भीगा भीगा है। नेहन तीन सीफन तक में पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है और फिल्म का नाम है धरती। फिल्म धरती से
1: इंसान अलग है, किसी का रंग दुनिया में हर इंसान अलग है, किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला। दुनिया में हर इंसान अलग है, किसी का रंग गोरा है, किसी का सांवला। किसी की आंखें नीली हैं, तो किसी की काली। लेकिन एक चीज है जो सबसे पहले हमारी नजर में आती है, हमारी लंबाई। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग 6 फीट से भी ऊपर होते हैं और कुछ 5 फीट के आसपास ही रह जाते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे DNA में। विज्ञान के अनुसार हमारी लंबाई का लगभग 80% हिस्सा हमारे जीन्स तय करते हैं। यानी अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आपके लंबे होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी का 20% खेल है हमारे खान पान और माहौल का। बचपन में मिलने वाला प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स हमारी हड्डियों के विकास को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लोगों की औसत लंबाई बढ़ी है, क्योंकि अब हमें बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नीदरलैंड्स के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, जहां पुरुषों की औसत लंबाई करीब 6 फीट है। इसका कारण है उनका संतुलित आहार, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स का अधिक सेवन और एक स्वस्थ जीवन शैली। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और बोलीविया जैसे देशों में औसत लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके पीछे है वहां की जलवायु, खान पान और जीवन शैली का असर। तो सच ये है कि हमारी लंबाई सिर्फ किस्मत नहीं,

हाँ, चोरी पकड़ा गया, चोरी पकड़ा गया, उनसे मिली नजर। झुक गया आसमान से, निकाल दिया गया है लता जी के आवास में। कलाकार इसमें है शायरा बानो और राजेंद्र कुमार।

0: से हम सुनेंगे अगर हम शराब पीते हैं तो उसका असर कहाँ से शुरू होता है और उसका असर क्या है?
1: क्यों? एक घूंट शराब पीते ही कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग के अंदर केमिकल तूफान शुरू हो जाता है और शराब आपके ब्रेन को अंदर से कैसे बदल देती है देखिए, पहले 5 मिनट में जैसे ही आप शराब पीते हैं वो आपके पेट से सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और सिर्फ 5 मिनट में वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि अल्कोहल एक छोटा मॉलिक्यूल है और आसानी से पानी में घुल जाता है। हमारा ब्रेन 70-80% पानी से बना है, मतलब अल्कोहल को सीधा रास्ता मिल जाता है। 5-10 मिनट बाद अब शुरू होता है असली खेल। यहाँ अल्कोहल बढ़ा देती है डोपामीन, जिसे कहा जाता है हैप्पी केमिकल। शराब पीते ही आप अचानक रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ओवर हैप्पी महसूस करने लगते हैं। स्ट्रेस गायब, टेंशन खत्म। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 10 से 20 मिनट बाद अल्कोहल बढ़ाती है GABA, जो ब्रेन को शांत करता है, और ब्लॉक करती है ग्लूटामेट, जो ब्रेन को एक्टिव रखता है। नतीजा, जजमेंट कमजोर, इनहिबिशन खत्म। आप वो बोल देते हैं जो नॉर्मल में कभी नहीं बोलते। गलत फैसले, रिस्की बिहेवियर, सब यहीं से शुरू होता है। फिर 20 मिनट के बाद अब असर पहुंचता है सेरेबेलम तक, जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। तब चलते वक्त लड़खड़ाहट, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना, रिएक्शन टाइम धीमा, यानी आपको नशा हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझ कर फैसला लेता है, यानी आपका कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा पी ली तो। अब बारी आती है हिप्पोकैम्पस की, यही मेमोरी को संभालता है। रिजल्ट, ब्लैकआउट, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या किया। और ये सब सिर्फ 1-2 ड्रिंक से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अल्कोहल एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, ग्रे मैटर से सिकुड़ सकता है। नुकसान धीरे धीरे शुरू होता है।

शांति ओम से हमने श्रवण की है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए पेश हो रहा है। इस बार है फिल्म देवदास

ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान के फिल्म देवदास। इस बार आपके लिए फिर एक सुंदर सा गीत चुनकर और रखी हूँ। उससे पहले तेरा नाम रहे जुबां पर, तेरा नाम रहे जुबां पर जैसे चांद रहता है आसमान पर, दिल में बसी तेरी याद की महक। ओहो, दिल में बसी तेरी याद की महक, हर सांस में तेरा नाम लिखा है, हर सांस में तेरा नाम लिखा है। तू दूर है पर इतनी करीब, तू दूर है पर इतनी करीब, हर पल तेरा ही पैगाम लिखा है। हम दिल दे चुके सनम,

आनी बुरा नी बुरा हम दिल दे चुके सनम, फिल्म का नाम इसमें स्टार कास्ट है, सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, कविता कृष्णा मूर्ति जी के आवाज में साथ दे रहे थे कारसान सर घातिया। जिंदगी कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी कुछ लम्हे यादगार होते हैं, यादों में कुछ लोग खास होते हैं, यूँ तो वो दूर होते हैं, यूँ तो वो दूर होते हैं नज़रों से, पर उनके एहसास दिल के पास होते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर वो लोग बहुत खास होता है जो बिना रिश्ते के कोई रिश्ता निभाता है।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बाबी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान, कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं दोस्तों, कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और अगर झलक दिखलाएंगे झलक दिखलाएंगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देखकर भी ना जानू देखकर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

ओरो दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ? तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम? जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा? ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम? और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटता है? वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटता है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम दौड़ जॉनी नंबर 1।

और बदन भी सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमिक्स सॉन्ग कहते हैं। प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिस इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोग रिमिक्स ड्राए मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राए, तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो, तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजिर बांधे। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से श्रीकाल है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की देश विदेश की समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सुरीनाम नाल और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे है, कभी कभी खट्टे है, और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। हम तुरंत चलते हैं और कहां चलते हैं, वाटरकांड सुरीनाम के ओर। हमारी जनता सुरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा अभी नहीं उपलोषित होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारी जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी और पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारिबो सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक मैन से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन तो पानी दोस्तों साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब आपके राजा साहेब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन न खाली बारिश भैया स्टॉकिंग सुरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया स्कूल के जितना यूफ्राउ मिस्टर रहा वो सब स्टॉकिंग कर ले रहा, कारण कि वो सबके पैसा ना फरहूक करत रहा था। अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करिस, इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिसी स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहू सब मांगे अपन लोन्स फरहूकिंग मांगे हैं। अब ऊ ना शुरू भैले भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के हैं अब ऊ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फुट आक्सी ना एट ब्लाई फॉर रियाक्सी फंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रियाक्सी ना दे ची सब मांगे आक्सी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सुरीनाम के खजांची है वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुवद्राट लूटे रहा, सुरीनाम से पोस्पार भंग के क्रोमो लूटे रहा। तो हम बोले तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि चलो के याद रहे ना भूलियो जा कि के कौची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सुरीनाम के 5 तारीख यूनी 2020 तक के सेंट्रल बैंक के कम कर्तन जो है 8:30 सब बैलकार आए ले वो प्लेंचे पे और फंड बैंक के प्लेन चप आए ले और सब हुआ पे अब्बा और बोले हैगा आन दा खफराक फोर सोरखन
vragen en signalen van medewerkers over de herziende functiehuis Obbele het bestuur noemde uitblijven van reactie teleurstellend en zegt de ontwikkeling nou letten te blijven volgen. तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में 153 यार 153 हां 153 यार हो गया है सूरीनाम देश में बहुत बहुत यानी कि अन एक्टिविटी ते है यहां देन हाग में भी एक्टिविटी ते रहा हमार प्लेन पे म्यूजिक बजल है और याद भइल है हमारे जोन बांब दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनी के कॉन्ट्रैक्ट आर्बिटर्स जोन लाला रुक पे 1873 में सूरीनाम में गइल है तो वहां के यानी 5 तारीख यूनी के उसको याद करते हैं 153 तक यार हो गया है तो बतावे द और खान शासी वेस यूरोप द ईस्ट हिंदुस्तान से इमिग्रेशन जो रहा बोले हैगा उन बेरिंग इन उन टीकर है द uitdaging van een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de economische sociale en culturele ontwikkeling in ons land Suriname mensen door kus के काम करे के डिसिप्लिन रहा सबके doorzetters vermogen रहा तो जितना अभी हमारे औदरे है आप लोग को बाप दादा हमार तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हां उसको हम नहीं जानते दोस्तों तो ये सब तो भारत देश के रहा तो बताए गए बाबा माई मोन्यूमेंटल लगे सब गइल है न्यू एम्स्टर्डम कमवेन में शर्मक्का क्रोडिंगर पे गइल है निकेरी में सब भी गइल है और वहां पर सब जाकर और वहां पर अने हरदाख कलेबा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सूरीनाम की ओर हां तो आप लोग जानो हैं ओएस के बोले ओ मिनिस्टर मेलफिंग बोवा बैतलांस साका के बोले हैं बोले है का ओएस में जो सेक्रेटरी जनरल हम लोग के अल्बर्ट रामदेव रहा पहले फी हैप्पी के तहत पे रहा मिनिस्टर फन बैतलांस साका के उछल गए फिर ओएस के सेक्रेटरी से बड़कवा हुआ के भैया तो बताई गई है कि वहां पर बोले ओकर बारे में अंदर सुख होवेगा फोकस भविष्यवाण वक्त रखेरिंग इज द आउटकम्सन फॉर अ मोगलक अंडरसुक अब फॉर दैट द डेफिनेटिव स्टैंडपॉइंट वर गनोमन द बोफाल ऑन खाली अगोरे है कि कब ये रमिया के बारे में छानबीन होवे तो बतावे है मिनिस्टर बोले बनाद्र करी दैट नीट इन सूरीनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फेटलक वारहेट इज इन द क्वेस्टी फॉलकस हेम साल इवेंटुअल अंडरसुक मुतर ऑफ वेसन ई है रामदीन के बारे में अंडरसुक होवे ओवा एस में बताए गए है वीस एरोब द रिक्वेस्ट ही ओक अंडर और दिस को वो तेरे ने मिसे द सेंसी फरकादरिंग तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोन जाने है स्ट्राफ रेक्टलक जोन से बन मांगे है ओआईएम और ओएम पठाई सेगा काने के अने अने दे नामे के हम लोन के माख है फरोर्डेल करके अंडरसुक करके बारे में बेकर बारे में आइट ब्राइट हम आप लोग को बताएंगे हमारी जनता की तोरिया कैसे हैं तो यहां भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हुवे सामन सूरीनाम वर्धन हिंदुस्तान से इमिग्रेशन के बोले है अ न्यू होप्स तो के नखफसीनेस तो ये भी एनडीपी भी एकर बारे में बतावे है दोस्तों साथे साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा भरे के परे है यहां पर नीदरलैंड में तो के बोले है ब्लास्टिंग कु भैया हां गाय ब्लास्टिंग कु के बारे में यहां पे

हमारी जनता, तो गीता बिहारी आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता, हम और आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे, सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ। तो साथ ही साथ और समाचार यहां पे दोस्तों जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई, यहां पर बताए गए है रूफ जो है चोरी चपाटी बहुत ज्यादा होता है देश में, एकर बारे में दयाना में सब खोज कर ले हैं और बोले हैं सिपाही के घर में से, सिपाही के पुलिसी ब्यूरो में से इतना इतना चीज चोरी हो गए। और आगे इंस्पेक्टर के गए ऑन द सुकरे, पीछे सिपाही के घर, सब इतना ब्यूरो के बीच में से कहानी कितना दे, यानी कि क्विक चोरी हो गए भैया। कितना क्विक चोरी हुई के देशवाम से, ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहां पे सोचियो हमारे चीज से फेल है, बस वही में से चोरी है चोरी है। तो सिपाही के मीडिया वर्क से भैल है कि ना भैल है भैया, ये तो 100% है। सिपाही यहां पे 24 घंटा रे बड़का कंटेनर में भैया, उतना ढेर क्विक चोरी हुई है, एक बारे में देना में सब खोज भी बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहां टोनी इसरी भी आ गया है। तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के, ओकर लगे देना के लगे ओएम यानी कि पीकी पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि इतीन अदमिया के तुलों तू स्टेमिंग हम लोग के देवे कि अंदर सुख करी सकवा के ना। और इतीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अभी तक फरार है। रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बुरंतो सोमो हार्ज मिनिस्ट्री फन बहुता लांस साके के, तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे नामे। और घीचा तानी यही बल वही में और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा यानी कि अने अने अने गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे, बोले उन ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी, बोले चोरवन के बचावे है, बोले जैसे पहले बचाए रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है, बोले उ सब चीजों ने करे है। मैं ऐन लग इफर खदरिंग हुआ इतना क्रासी गए ले भैया कि दया ना में गए है सब। और हम सब फॉलो कर ले भाई कि हुआ पे कैसे केस टेम करी सेगा देना में कि इस फरफोलक कोई होई कि ना होईगा, एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड ओकर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सब देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और समोहार्ज इंस्टाट फन बस्किल किंग होई गए है। अब ओएम के माख है इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देश अनमीरों जो नया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा, स्टेम करी सेगा कि स्टार्ट बस्किल लुकिंग में सोमो हार्जो और का बोले हुफद्रात और नूर मोहम्मद के अने स्टार्ट फन बस्किल लुकिंग स्टेल कर सके ओएम के चाहिए जाई के इस सब के अंदर सुख करी कैसे है, तो कौन ची चोरी कर ले कौन ची ना चोरी कर ले है। तो जो नेशनल असेंबली से नाम है दोंदर दाख के द फोर्डरिंग फंड पी के बहांदल करी से ओम खवेसन पॉलिटिक अमतनारन तीनों ने मुआ जो ले ली है सबके यहीं जाई के अब अंडरसुक के एनडीपी वेर्डन फ्रागन खस्तेल ओवर द वॉलीडिटी फंड द दोषे। एनडीपी बोले हम ना मांगेला एकर बारे में बतिया, बोले हम मांगेला वॉलीडिट दोषे हुए वार फन गया दिन। और अनमियन बोले तो के ना हुफते सब बोले तू अंडरसुक थोरो बाटे तू पी के ना बाटे, बोले पी के ये तो के कागज पठाइस के रमिया खमांगेला तोर अनमिक देनान में ऑन सुख करे ओंदा तू कुछ करी से तो हमार कामना सबके फरोर दिल के हम लोग के काम है तू स्टेमिंग देवे के पीके के ओएम के रेक्टर के काम है बपाल करे के। तो मर्डर है एंड लग
opgelucht mensen. Heel veel mensen zijn opgelucht. Kies gewoon onderzoek hoi. Niet een mooi iets is op deze loot loot chori karker. Of mouch karer he bhaiya. To VHP, NPS, Web, ABOP en A20 benadrukten juist DNA ke. Ki rechtbank is niet. Bole ki geen rechtbank is, bole DNA, bole rechtbank na he. DNA is geen rechtbank en niet hoeft te oordelen over de schuld of onschuld. Volgens deze fractie moet de onafhankelijke rechter uiteindelijk me ikerbare mee bole ke. O NDP chorwan ke khali bachawe bhaiya. Chorwan ke khali bachawe he to ni ki ikke na karte, ikke na karte, ikke na kar. Aan chora log ke bachawat, bachawat. Hum log ke desh barbaad hoye. Abbe ohi platform. इस सब ड्राई करे हैं तो फरप्लेस ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे कि ना जे ना मांगत रहा वो साल छोड़ के ओके चाहत रहा चल जाए कि तह फोर से तर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया बोले हम ना बैठे कुर्सी पे एगो फोर से वार दी मन फोर से बोले जा तू बोर देख कर बोले हैगा असेंबली के फर्दरिंग फॉर ने पीके तो स्टार्ट फ्रॉम बस्कुलकिन स्टेन फ्रॉम थ्री फॉर्मल पॉलिटिकल अमतनारन. Daarom is voldaan bij wettelijke vereisten op grond van artikel 140 grondwet in staat van de beschuldigingstelling van politieke ambtsdrager in de WIPA en kan de openbare minister strafrechtelijke onderzoek voortzetten. Dit is dus een hele goede nieuws mensen die op Kabul hega OM vrijbaar ik er waren mee. Onderzoek kreeg ik bij hem te PG, jongen. Hem ook in Suriname ke straflechtige onderzoeken kunnen verder naar de besluit van TNA. De ik er waren mee een PG. Hem ook hier op apart partij ze. Ki op Oesab Jaasab ke onderzoek kreeg. Ingestemd met de vordering van de PG. Op het eigen hij gaat oud-minister Klimmer Hoofdraad. Openbare werken nationale Noor Mohammed ke. Of Noor Mohammed ke baat me brunto so moharjo ke. Of yani ki sab ke de vordering van de PG werden op 9 maart 2026 bij DNA ingediend naar de behandeling van de verzoeken. Deze week stemde het parlement in met 3 vorderingen. Daarmee is volgens het OM voldaan van de vereisten van artikel 140 van de grondwet. Dus toe hem wil je aanplukken hem. Chota roep me bataai ki sakwa kaise hai hamare janta. Hamare piare piare janta. To ee joon malai hai varon to bhaiya bahut jor छटकट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्ट होइए और बोले उल्टा पूजा ने सब कोई मेर दर है तो के बस्कुल दख कर दी तो ही आप रे बोली से का नीमा स्टार बोफन हेड फॉलक ओ ब्रुंतो नीत तो बोले हैगा आप इस अफोकार ले के अपन साख लड़िए पेर असेंबली फोर्सेटर असेंबली ले और समोहार्जो पाउल समा ब्रुंतो समोहार्जो eist een eigen staat van beschuldiging instellen. Apre wat betekent dat is die mag je, oké? Want u jane akeel u thoro boliga ki hamme na maktul ke onderzoek kare. Grote deel bolisega ki sabke chahe onderzoek hove ke ta apro teken kar des ki ha chahe onderzoek hove ke. To dosto Suriname ke duane bhaiya aap dekho tamasha kaun chakallas bhaila bhai kaun chakal ego aurat ke bhaiya ego aurat hai ga duane major worker bhaiya Faraz bhaile vrouw keer terug van vakantie. Ego aurat vakantie se lautal hai bhaiya kahan gaila laut ke to bhaiya sundar hira aapko bhi hum bahut स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेशन के जो आज जो 5 यूनिट के होंद 3 एंड 5 तक यार भइल है तो आपको भी बधाई है जितने हमारा हिंदुस्तानी हैं रेडियो फाउन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं तो यहां भैया दुआने दुआने भैया फरास हो गए के औरत गई ले फकांसी से और फकांसी से लौट के आई ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हमनो सुरिनाम से आईला ते का बोले मछरी लाईला भाई मछरी लाईला कड़ा बोल आईला अब ई औरतिया गईला फकांसी से भैया Ego Zwitserland, dit is wat een vrouw in de Zwitserse plaats Taing deze weekdag. Douane had er even druk mee bij aan. Douane medewerkers, Jorha bij de grensovergang van Taing.
बुधवार के एगो बस्तेल विषय उज्जर उज्जर आयल है सवेलदन वेतन वाद शफेर दी तरह कौन फन फकांसी फरफूर दे बोले फक कौन चिल आई से बोले द फ्राउ इन एड बेश खाफदार खोर आन एर बखोन हर बखाच ऐत तपाकन शुरू करी से अपन बखाच ऐत पक्कर बेसुआ से भैया फेफन फेफ तक कोफर लेके आयल है भाई फकांसी चलो उटल है अब बोलिए का धनिल भैया दुआने बोले अब कौन चकल्लसी भैल है द हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता। तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है। बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम आप लोग को बता चुका है, लेकिन और बात आप लोग को हम यहां बताई भैया। एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ बौश बरख तो लोन जानो भैया, ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ सेल्फ मोर्त बरेको का नाम चाहिए ये ही देखो भैया, जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया इरा जा टप से कुछ जाए कभी ना निकल के आवे बहरे। तो ऐसे को देर तक यार के अनमी गैल है भैया बौश ब्रेक पे। तो हुआ से टेलीफोन करे है और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है ना बौश ब्रेक में से

ला तो टिकटॉक बनावत रहा भैया लाइव यात्रा कूदे कोड ना दे से मिलने के वेर द फॉरबिडिंग फॉर ब्रोकन बोले फॉरबिडिंग व्हाट ब्रोके ओ हीरो से यरमिया ना भेटाने भैया कोई के ना मिलल है सिंस दिन इज देयर हिन कांटेक्ट मेर खवीज में ने बी एम तो फर्मूडलिक इज दिस मान नेचुरली इन हेड वाटर gesprongen mensen हम जाई तेरी फनट हो को हाई स्ट्रेट के बारे में बहुत भैया आफत मचले सन्ना में जोनन में सन्ना में गाड़ी चलावे है आपके तो पता रास्ता वहां में भैया हम का बोली जैसे काउ फूतू होइगे आसफाल में काउ फूतू जैसे होइगे भैया मां काउ फूतू में तो अबे तो गोल घुसी निकल जाई इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई स्लांगन हाउस स्ट्रांड के बीच में फनो हुक है स्ट्रांड की आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुल जाए जो समय पे फिर यहां पे रहा भी ई प्रॉब्लम हुआ रहा तो ई रखे रिंग हुआ लोन क्लाक करत रहा भैया अब वो ही के रखे रिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए है अब जनता उल्टे गरियावे है एनडीपी के रखे रिंग के तुतुलों कोंची करे है तो यहाँ बताई गई इतना भारी भारी घटता खदेट लग ऑन कपे 105 तक मीटर अब बोलेगा स्लेक्ट तुष्कान फन वेग द अफलोपन प्रियोड अब इसे मांगे हैगा फन ढूक है बहुत तो दृष्ट बरेदन वीकन उतरा ओ तो हुआ चले फन ढूक है स्ट्रात में और उसे मांगे चार तारीख यूनी के चार बजे वो छः बजे लेक मांगे बंद करे टुक्का और एक टुक्का मांगे सेवन असफाल तेर करे भैया वही बात है वेर बुरुकू और पूर बुरुकू हम लोग निगरे में बोली न वेर बुरुकू चपटावे भैया सुंदर भाई जैसे कि कोई जब ढोल बजावे है और उंगली कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है तो घरवा जाए तो तेल लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना और जो नदमी नाचे भैया जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है तो उस समय पे मोटा सौका को पहन के अच्छा करे ऐसे भारी भारी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया जैसे चिरई हगे है चारों बगल वैसे सबन आसफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे देख हम बना देली बाटी तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चिजुआ खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइट ओके परमानेंट ही लमाल असफल्ट तेर करके और हमारा ऐसा नाम के फनोहूक है स्ट्रात बना देवे है तो सैफ बी से चित्रा अवतार भी आएंगे है तो वहां पर सैफ बी की फिल्म हमने देखा है पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए है आदमी लोग के वनिका से बुड़ल है आज के हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है लेकिन काल के हाल कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है तो भैया एक आदमी है सीफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रास्ता का नाम बा पीका दो स्ट्रात और अनामू स्ट्रात में वहाँ गैल है भैया जब हुआ गए ले पिकादू स्ट्रांड में तो बताए गए है वहां पे एगो त्योता फिट स्ट्रांड भाए और बोले वहां पे दकते गए ले वैसाख है दा दफर मुडलकस के तो सामन में द अंदर खराई से तो फत्रों के अंदर एक तेम तुरतोला दग उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो न जाए इस नाम में स्कोटन खलोस बे बार हिल्स को फोनर ऊपर पार्कियर टेरेन तो सुरिनाम इज ऑन फेलक मेंस बार और में ना जियो हम में भी एक मनिए ठंडा भी रहना तो अपन घरिए मंगियो भैया ठंडा ठंडा पारवो वीर और ओके खूब नच से घरे पियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोड़ करोड़ ही मरियो ठंडा ठंडा बीर धरियो और धरियो भैया धरियो बैठक गाना पाचे में और झकझक झकझक बजे है दन हैप्पी हिल मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दियो भाई वन असाई तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परसिये माई के लूटले वे है दिस ओहू चीजुआ बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार है इत बताईला अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ना

0: मिनिस्टर के बोलेला मिसी काबा फॉलोस कोसंत है के अभी का बोले भैया सुरीनाम में सिस्टर एस्टर भैया ना है सब खोजे फॉर प्ले कंद के त मिसी काबा का बोले फॉलोस कोसंत है कि अब उ का करीगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्ट पे मतलब लांटी के कोस्ट पे अपलोडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फॉर प्ले कंद के तब बोले जे के हम लोग लेस देबे तो के फॉर प्ले के 5-6 बरिस फॉर प्ले के सन्ना में काम कर ओकर बाद में मांगी बैतलान त अपन जाई के काम कर सके है आंद्री मिसी काबा के प्लान है भैया इसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सब के मोई से पकड़ ले मांगे उस सब के अपलाइडिंग हुआ भर देवे 5 बरिस फॉर प्ले कर दे सो हम का ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैतलान में काम करो हैड फेथ दैट इज सोन ग्रोत फ्राक इन बैतलेस ना सुरीनाम फॉर प्ले कंद के बात है भैया नीदरलैंड्स में ढेर निकले लेकिन आपको हम हिंदुस्तानी में फोड़ के तरीस बताई दे है कि एकर प्लानिंग का है बोले हैगा फन वीक है फेद से देर तक दैसन ऐसे दी नीत के न बता लें उसे उतरा है अपलाइडिंग तो बोले हम लोग भरब है तेज विन वे स्ट्रैटेजी ओम दैट वे नीत मेर के न हेवन दैट वे मेंशन अपलाइडिंग फॉर हिट बैटलान द डाग वारोप मेंशन हिन डिप्लोमा क्रेगे कुनन से एंकलक अल इन अ फ्लुगटेक स्टापन एंड वे गान तो ये बात है हमारी जनता मिसी काबा के प्लान है भैया मिसी काबा का प्लान है ना कि अपन फॉर प्लीक कुंड के मोई से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए अब देखो भैया तुम लोग जानो सुरीनाम में दुकान में के आगे वॉर्स बड़ा गरम गरम बिका है तो हाँ गरम गरम वॉर्स हुआ बिका भैया तो गरम गरम वॉर तो हम भी कीन के खाए भैया मुर्गी के तो यहाँ बतावे है कि ऐसा जो आदमी वॉर्सोन बेचे हैगा ओहू के छुट्टी ना भैया का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉर्स फॉर कूपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वॉर्सवा कदमिया दागी समझाई नहीं वॉर्स मांगत रहा कौन ची मांगत रहा फॉर नूमन वॉर दमान सेल फॉर यार दक सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन तुई क्रिमिनल ओप ब्रॉफिस ते प्लास फॉर स्कीनन और दोनों उतरल है और बोले द बकेंस्ट्रात दैट बकेंस्ट्रात आज पिल्लू कोनो पिल्लू भैया बकेंत है पिल्लू के नाम से और कोनो के पिल्लू नाम है फॉर फॉल्क साल दे प्रोसेलिंग ओ पिस्तौल और दागी से भैया इस सब के फरियारी दुकान के आगे मनावत रहा सोना के केती घींच के ले के चल गए है द वॉर्ड फॉर कूपर फॉर सेट से खीफ वारना एगो वॉर्ड स्टिलिंग भइल है तेज कॉन्फ्रेंसी फिर द रोफर्ट खरेक्ट ऑफ है ना है स्कॉट रेंडर द फरदाख्त तरीक ना द ब्रोंफीस और एक केती ले के भाग गए बोले अब जाओ फिर वॉर्ड्स टू बेचो भैया वॉर्ड्स वॉर्ड्स करिए और बोले द खवन द वॉर्ड्स फॉर कूपर क्रिक डायरेक्ट सिपाही आई है डायरेक्ट ऑन कीफिंग में सामन से जैसे अखतरफॉल्किंग द ब्रॉन्सिस वार ऑफ द फरदाख्त वान कफ्लिक वेर लाटर ऑन बहिर आन कत्रोफन मोंप्लेसिर में मिलल है और तू जाने भैया इस सब चोरवन जंगल बारा जोर कूदे है भाई हम रोक के ती सब निकेरी में कपड़ी घींची से कपड़ी के लंडन छोट छोट घींच के और भगल है जब दौरैली भैया तो जंगल में घुस गए हमका जंगल में जाबे भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ केती हम मरे ना जा भैया जिंदगानी रही तो फिन खेती की ना जाई मां हम ना जा भी छुड़ी भकौल के तो रांच राम लगन भी आ गया है तो भैया रांच आपको भी हम अपने प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं तो हमारी जनता और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर हम और चलते हैं सुनाते हैं आप लोग जानो है हुफ दराद कितना दिन से फरार है भैया फरार है कब से वो भगल है भैया कई वर्षों के कोई ना पा बकोक और सखवा चले है और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर्स सेक्टर अधीन से हु हेव ती हुफ दराद बराई अरे कैसे तू हुफ दराद के बराई कर ले बाटे अभी बतिया पूछे है दौंदर नाक मेदाख के openbare minister tot het is staatsbeschuldiging van de voormalige minister hoofdat Riyad Borontoke tijdens de vergadering richtte VHP parlementariër Mahinder Jogi, die ook deel uitmaakte van de commissie die het verzoek heeft onderzocht, een vraag aan DNA voorzitter Ashwin se poochi se Jogi wilde weten op welke wijze de voormalige minister Klimor Hoofdraad op de hoogte was gesteld van de ingediende vordering. Ik wil aan u oriënterende vraag stellen. Ik neem aan dat ik die vraag mag stellen. U deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vordering zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u voorzitter, hoe heeft u de heer Hoofdraad bereikt? De Jogi to puche bole tukai se bereikale baate adhinwa. Voorzitter, baate wadamia faraar hai. Bole tu bole sab adamien kit op de hoogste sal ab adhin batao na. Adhin reageerde en met een glimlach, u weet dat er zijn raadsmannen antwoorden. De parlement voorzitter, aur bhaiya Mahabharat. Nou, ro parhal hai, Gita kaise dhyan dewe hai. Ehi adhin, aur hiyan pe jhoot bole bhaiya. Bole hai ga tu jane, raadsman advocaat usse. Uka bole contact kari se hans ke bole hai. NDB fractieleider Ibu Jones concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementariër voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel Joosta Jones tot de kutere bij ja kaliokar. Okere voordeel meer het en meer kehna hi bhaiya ki iedereen mag iedereen vragen stellen. Sabke mag je vraag stel kareke. Dat is het gewoon mensen. Of je adhin bent of je president bent, maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen. Tony Amskobhiham, Yaniki, Hindustanse immigratie ke, bahut badhai dete hai, tam suchila, jitne lok hamara Facebook pe hai, sundar hira ranch lagan, aur chitra, aur yaniki isri, Tony, Raja Jodhya, aap sab ke liye ek geet hum chalate hai, aao milke isko suna jaye, ye hai hamare परवसी के कहानी
1: 140 बरिस होई गए

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरिस से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में धूल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए, चल सुरीनाम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई।

पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिन खेती बारी करती तब ढेर पैसा मिलत और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलत। अरे खेतवा तो मिलल

सरनाम अपन दे सोई गए सरनाम अभी यहाँ आए के अभी धरिए रहबे जिंदगी अभी यहाँ गुजरी।

0: तो दोस्तों, ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे, जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं, यानी कि DFF तैयार हुआ है हमारा इमिग्रेसी के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउन के तमाम कोलीखा डायरेक्सी लीडर की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लेडिंग शीफ आसे भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं। हमारी जनता, तो बातचीत ये है हो रहा है सुरीनाम में। आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सुरीनाम में, क्वेक के बाद हम करते हैं सुरीनाम में क्विक जो है चोरी भय ला भैया अब एक बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तो जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी, यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूसिशियन पॉलिसी के हनीश मनोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है। एगो कंटेनर में जोन पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके है तेकर बारे में ए बे जोंस अब ओम चटकल के कहे फरक हुआ। तो स्टेल अरे भैया तू बाटे दे ना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हो सके थे। अब एक बारे में कॉर्पशेप मेल्फिन पिनास जो है वुर्स दाखद्री यूनियो के गैल परसोलक ऑन द सुख करे बसुख खबरा अन पॉलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल के साकर सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आइटम कंटेनर फन अफदेनिंग फ्रॉड एंड ऑन फ्रेमिंग सेन फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में वहाँ पे एगो पार्क है भैया, और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है ले के हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया। और जो पोकलेनवा गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले हैं कदमी जड़ जबड़ आका कानी से इतने फिर तक बेले कौन जी भैया जबड़ जबड़ बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे। और घर में अब सब इन बूदल है, सब इन बूदल है भैया, तोड़ तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है ओकर घर जहाँ पे उसे 20-25 बरिश रहे और गैल है सब घर तुराई गए हैं। तो एक बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गैल है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई कई सची युवा बंद कर दी से स्टॉप करी से। और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जो हुआ पोता जबड़ जबड़ अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकियन लेकिन उस के रहा उसब के रहा कि स्कोतु सुरीनाम के ना अनपक क्रिस में सो वापन ले के हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भेल है कि जगहियन जितरा हैगा त्वेई केर बिचाने भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जगहियन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जगहियन कीने रहा अपन कफलवा फिला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा न, न, न, न, कॉम्प्लेक्स के। तब वो उस सबके घर तुराई गए एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है। तो अब यही स्कोतुआ मेल्फिन पीनास कॉरप शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ई चीज कैसे हो सके है और सुख गए करे क्विकवा कैसे चोरी भइल है। तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर डुइंग फन हु विल हेड क्विक कॉरप शेफ नेम द साक hoog op en heeft direct aanvullende veiligheidsregeling laten treffen. Aur jitra chiz abhi container mein raha sab wahan se froisi karwa di se. Ab froisi to bhai le bhaiya kyun kahan gaye le froisi ke Suriname kisi bhai vishwas na hai bhaiya pratap avtar vishwas na bhaiya bole hain jk moose ke dhariyo aur kaise bole bilar ke dhariyo na bhaiya hira doot rakhave ek taka hoega. To hamara fatingan ramraj bhi aa gaya hai aapko bahut pyar se swagat karte hain bhaiya fatingan तब धरियो बिलार के दूत रखावे के तो कैसे रखे के रखे कैसे वो रखाएगा। तो कॉरप शेफ अब गए ऑन द सुख करे कि चीज हुआ कैसे है और इंस्पेक्टर बेन ऑफ द इन फ्रॉड किंग पिनास ओक ना आनखिफ्त दीन्स, और बोले है मुंगरा प्रोजेक्ट के बारे में एक भी गल अंडर सुकरे डेनिस विला पार्क सॉर्ग फॉर फील फ्रागन अंडर मेयर ओवर द रोल फॉर द पुलिसी टाइडस द ऑन्ट्रेमिंग नार द आनलाइडिंग दार फॉर इस मिडल अन अंडर सुक स्टार दोन गेस्पेशलाइजेड एनहेट फॉर द बस्ट्रेडिंग फॉर सोर क्रिमिनलिटी के बारे में तो फीला पार्क मुरा तो लोग कितना कितना घर आदमी लोग के इन बुदल भैया जेमा इरको लगल एस कासिए घर में अब सब इन बुदल है कितना आदमी हैगा जोन के हुआ फकांसी है बनाए रहा अपन घर बनाए वे रहा और ग्वाइटलैंड में काम करत रहा जाए जाए धीरे धीरे अपन घर बनावत रहा कितना आदमी जो रहत रहा भैया सबके घर टूट गए है तो बहुत दुख के बात हैगा सूरीनाम देश के बातचीत हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाए तो एनडीपी का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फॉर थिंग यार लॉस्ट ये नीड इन फेफ यार ऑफ और बोले मोदर पुल के बोले चाटान जो चीज है बोले जो धसान चाटान है बोले है दस बरिस के बोले पांच बरिस में थोरो बोले ओके ऑपलॉस कर पावे जब से देखो तो चाटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भइल है कैया सफा भइल है एनडीपी कमोवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल तरख दतन मुदर पोल नीत इन ए स्टाप कर फरांदर इन द ड्रिंक वाटर दिर फरकलेकिंग एक्टर ओक फन टूपासिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन रखेरिंग सन टोकिन 2020 आंत्रो ऑफ फाइनेंशियल मुदर पोल दी टिल्ट गेडुरेंडे 10 यार इज ऑनस्टान लॉस इन नीत बिनेन इन 5 यार बोवेनिन वेरदे द ईस्ट ट्वीरे रखेरिंगसयारन overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, de economie en overal terwijl het zwaar trof. De दस बरिस या के चाटा में लोटत रहा भैया तो अपन चाटा जोन में तू लोटत है अब जाओ अपरो एक गिलास में धोइयो या परमानेंट में नहो ये सफा तो ना हुई भैया आधा सफा जो होवे है ना अरे तो फिर से वही में लबड़ा जाए कौन आवे है जो समय पे फरकी सिंह तय थेगा तो चाटवा लभेड़ल करी कि सबके हम का बोले खूब खवाई पियाई कि आओ हम में तू लो करके फिन बैठाओ और वही में काम दिए दुनिया भर के आदमी लोग के अब देशवा तब चाहटा में हुए तो जोन अदमिया ले देशवा तब बोली हेगा देखो कितना हानि करके देश हम कैसे देशवा संहारी देते यार इन यार इन यार ऐ थे युवा भैया सन नाम के रवाज है युवा तो कैसे भला देशवा हमार हमारे देशवा कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरीगा सुधरे वाला ना है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों जॉनी के कहना सफा बात है अच्छा लगी तो ले लियो खराब लगी तो हमारा। अब देखो मिनिस्टर भैया एल्फेफे के नूर सालीम के बारे में यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन जोन समय पे एनडीपी के समय पे ई परामारी बहु के देसी रहा भैया और आप लोग जानो हैगा एक रात में जोन तेकन निकल ले रहा कगचुआ तुम लोग जानो है ना किल के वहां पे जघैयन बटाई गया रात भर में वही नूरसालीम है भैया वही नूरसालीम है। अब एनडीपी जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से एलफीफे के मिनिस्टर बनाई से भैया अभी एलफीफे के मिनिस्टर तो बन गए हैं मैं एलफीफे के मिनिस्टर तो बन गए हैं एकर बेटवा कौन चक्कर लस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है ओके नूरसालीम माइक नूरसालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फीतिल एंड फिशरी एलफीफे के एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नराइन भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया और एक के ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई हाँ और ये लांटी के ओतो चलावत रहा बोले है तबे द्वे मानद वर्दन और बोले है कि को 15 यार के बरो में को लंडा 15 बरिस के ओके समान रूफ करी नूर सालीम हुआ के बेटा हुआ 20 बरिस युवा वाला रूफ करी से भाई यहाँ बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौन ची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे बाप है मिनिस्टर, और लड़कन ने देखो का करे भैया, बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है, मन लड़कन बाप माई के नाम गिराए दे है। आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से। उधर बहुता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है, और वो बेटुआ और करेगा और है वो बन रहा भैया, वो निकल है तो लड़कन। अब उधर एगो और भैया गाय चोरा रख के गए एथनल के बेटुआ, तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन ओकर नाम गिराई देवे। ऐसे यहाँ पे नूर सलीम के बेटुआ एगो 15 बरिस के लौंडा के रूफ करी से बरूफ करी से एकर बारे में अनखिफ्त भैले भैया। पुलिस मांगते इधर बकेंदर बेरे फरदख्त न उफले सिद बेर ओएम द साक वेर फॉर फोरकन फोरकले एरसी लगे। और बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि ये सब लंडन जो नहीं गया दिस फुरतई से ऊपर से भैया एदर पुलिस अंडरसुक ब्लैक दर फरदाख्त से इन दिस फुरतई फन मिनिस्टर फॉर एलफीफी फॉर प्लाट्सन टू से ने मिंदर यार के ब्रोंफिस तेगन क्वामन फॉर द आनगिफ्ट सो द स्लाक्टोफर फॉर फॉरगस तेगन सेन विल सेन मी गनोमन एस ऊपर से के में सैंडल भी करी से भैया। तो लंटी ओ तो देवे हैगा मिनिस्टर लुक के कि ओकर बेटवा जाओ चलाओ और डाम पे पइयो कोई के रूफ कर लियो। ई हमारा देश है भाई, ई हमारा देश है। जनता हुआ ब्लास्टिंग भरे हैं ओ तो हुआ के जनता के ब्लास्टिंग से तो हुआ कि ना है, और मिनिस्टर अपन बेटवा के देवे बोले जाओ रूफ करो। ई भैया कैसे देशवा चली, और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है ई सब फराख ना जाने स्टेल करे ओमदान द मिस्ट मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोर देल तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बेन ही एक अपील माल खिन फोर देल में निमान तो सच्चाई अन मीडिया मुत आल्टेज फ्राई कुन प्रात फ्राई कुन प्रात जैसे है ये मुत निमान फोर ट्रैक। जब नूर मोहम्मद के में इंटरव्यू करे जो बदमाशी करी से चोरी करी से तो ओके चाही जहल में जाई के सो इसत ओको फर्दी रखें ना चाही करे के। जब हुफदरात लूट के गईल है तो ओके चाही जहल में जाई के ना ओकर ऊपर तो लो हाथ दर के ओमदा तू एंडे ही पेयर है तो ओके ना माखे फोर दर एक्तर जाई के। सो खान अल्लाह ने दौर खान अब एको छोटा आदमी घरे चियो पर दे इधर खोई चके धोई चके आसान भले ही के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है। इंग्रिद बाउतर्स बोले हुफदरार के ना चाही फोर देल करेंगे, एको मलाई नहीं बोले है अधीन जोन फोर से तरह आसान भले ये छोड़ के चल गए है तो हम लोग के रेक्सटाट कहाँ है सूरीनाम में दोस्तों। अतिस बलखलक फॉर ओंस लैंड सूरीनाम दखात तुम एंड दैट इज कौन द वार है हम किसी को फोर ट्रैक न करीला। तो जनता हम जाई भैया अब जइयो सूरीनाम देश में तो हुआ पे भैया हॉलैंड के कुत्ता पइयो। हाँ तो कुतवा जो है भैया बारा जबर नकुना है ओके ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे है झुर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूने भैया। और कोका जो सूही तो हुआ टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना, और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर सीन जान जाए बोली कम में कॉफर खोल के और कोकाई ने तोर पाई जाए। तो नीदरलैंड के अम्बसाद जोन बा सूरीनाम में कुतवा के दी से ऑफिशियल दृक्ष पीसो तो जितना आदमी दृक्ष फुरिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता तो ओकर बाले में कॉल लगे मारा शीशे ही लगे जइयो ऐसे बतिया है। एट मिस ऑफ फन एंड फन प्रोजेक्ट इज दैट ही मेड अ बास्ट basis wordt opgelegd voor de nieuwe Hondenbrigade. Kebare me dosto, Suriname des ke bhaiya char mila pakrane yes ke phol pe paisa vet was kartra bhaiya ha. Aur namua ham sulli bati. कौन कौन है ओ मां बाकी जब लेग मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बताबे ना अति स्त्रिख है मेंस अति स्खाहिम जे तो के पकड़ी से वेत वास के चीज और वो बतावे है कि इतना सन्ना उच्चा दुगो और दुगो मरत है गा सुरिनाम के यहां के पोल पे उकले के बहुत ढेर पैसा पाई सो के दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सुरिनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहां बंद करी से का फुट वेत वास पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना बताबे उन दांग हम नमोन सुन चुकली के है मदखा एक नहीं सेख ओमदत नहीं बकेंट इज एक वेल सेल्फ नीट इन द प्रॉब्लेमन कोम मेंस तो ऐसे बात है अजन क्विकवारा भैया फेई फंड सीफन 30 किलो क्विकवा चोरी भेले कंटेनर कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भेले अरे भैया तू एन तक तक किलो हां तू एन तक तक किलो उजर कामिल लसी गौरी चरण गजरी हाँ आपको स्वागत करते हैं तो त्वेयन तक तक किलो भैया सेफन तक ब्लॉक सेफन तक ब्लॉक में पैर्स कर भैया तरीकी कर भैया दबाए धरे रहा कोकाइन 80 किलो भाई दो पिस्तौल मिलल है सुरिनाम में बिलल है जहां पे सिपाही अंदर सुख करता होमपर स्ट्रात में बेड अंदर सुख इन द फुरते एक वर्दर मिर्दर ब्लॉक कोकाइन और दो वापन मिलल हैगा ड्रग्स फंग इन बेड फुरते uiteindelijk uitkom op meer dan 80 kilo. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs. De wapens en wat ups. Maar ja, ik heb ja, kweek, chori hoi ge. Ik ook een waka hoi. हम कोई के बस के लख ना करीला मा दैट इज हाउ द वारहिट मींस द फॉरट्रोट है द ऑफ द पॉलिसी फॉर सिरिमा सिरिनाम दी राग टेलकस वेग भैया दी राग टेलकस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi jab aila bhaiya net buiten la to ohi Hanis Manoret bole raha bole hai ga mo rek konte kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले 93 मीटर जोगी बोले 93 में बोले स्कूटर तो कहते हैं करे पुलिसी ब्यूरो में से क्लाइस में से पैसा चल जाए ई चल जाए यू चल जाए 300 फील अन अन अन किलो क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए है तो बोले कैसे एकर बारे में है तो ये बात त्वेयन तक तक किलो कोकेन भैया पकड़ान है हमारे जनता ऐसे बतिया है तो और आगे हम आपको सुनाई है बे बोले री सिपाही भी मांगे अपन नाखदीन के पैसा और सिपाही मांगे नाखदीन के पैसा ओहू सब मांगे हैगा ऑफ हेल्दरिंग एकर बारे में हमारे जनता हमारे दोस्तों तो आप लोग को हम बोली एगो गीतवा सुनाई दे तो शासार शारसार सारधा जवाहिर आ गया है हमारा प्रोग्राम में आपको हम स्वागत करते हैं
1: जब श्री राम देश

दोस्तों एक घंटा हो चुका है, मुझे प्रोग्राम तो रोकना पड़ेगा ना। और अपना देश को हम बहुत याद करते हैं, हमारा मातृभूमि श्री नाम है। और अगर जब किसी ने उस पर उंगली दिखाएगा तो दिल में तो चोट लगेगा ना, चाहे वहाँ के लोग चाहे यहाँ के लोग। अपना मातृभूमि तो अपनी ही मातृभूमि है हमारे दोस्तों, और जब अपने ही लोग उसको जो लूटेगा तो बताना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा ना।

हम बधाई देते हैं हमारा इमिग्रेशन के 5 यूनिक का जो हुआ है और वो सीता गौरी चरण है, शारदा है, चित्रा है, मुन नारायण है, राज राम लगन है, टोनी इसरी है, सुंदर हीरा है, चित्रा अवतार है, धर्मेंद्र इसरी है, प्रताप है, राजा अयोध्या है। आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम, नमस्कार और प्यार भरी राम तो फॉल खे केयर। तो दोस्तों आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वास वाला मोह ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं, और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

लग रही है।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तो मुझे क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना,
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस पक्का।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे, और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था, हम उनके हम उसका देखने के हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जो उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जयबाद बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग और

उदित नारायण जी और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाव हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून किए मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं, एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा है, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है, बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी ही आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं राहत फतेह अली खान।

लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र के।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाक्य आपने सुने, बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला के नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है, करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार

0: लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निगेती सशस्त को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।
1: है कि मर कर भी तुमको

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सभी छाएं उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी निगती शस्त्र को 1966 का ये गीत ओपन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है। और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं थी फिर से 1964 का ये गीत लता दी शंकर जयकिशन के साथ।

ट्यून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी चुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं, आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली तुई सैफ का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथ मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार नीगति निग्न से स्थ आशा जी और जी लता आशा और लता मिल के गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निग्न से स्थ 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: हो जाती आजादी।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा जरूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाएं निगती सैफ अंतह का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

होता है सुनने वालों, अभी तो आपने सुने हैं विशाल हीरा जी की आवाज़ में, भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, और भौजी के का होवे है मैं कुछ नहीं कहूँगी। गलिया से गलिया

0: We got the whole world shaking.
1: Shake it baby, shake it. अभी आप सुने हैं और हम सोचते हैं कि आप अपने घर पर जरूर भी यानी shake किए होंगे. और ये तो हमेशा होता है, यानी बड़ी तादाद में होता है सुनने वालों के. जब लोग शराब पीते हैं तो क्या होता है, संदीप बदलू जी की आवाज़ में आप खुद सुन लीजिएगा.

संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कि बुढ़वा क्या खोजे है और बुढ़वा और क्या करे है, ये हम आपको सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बुढ़वा बेईमान मांगे करेली के चोखा। और करेली के चोखा के बाद हरिदत्त जयराम जी आपको सुनाने वाले हैं पैसा के मैया पहाड़ चढ़े।

कैसा के माई पहाड़ चढ़े अभी आप सुन रहे थे हरिदत्त जयराम जी की आवाज़ में। बार बार बगिया में कोयल ना बोले।

अभी आप सुन रहे थे दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज में बार बार बगिया में कोयल ना बोलत। और दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकुल जी को। सजन मोरे आचार्य

अभी आप सुन रहे थे वादिका रामसुकुलज की आवाज़ में उड़ उड़ जाए निंदिया मोड़ी। आपके आ जाने से हम पेश करते हैं सुनने वालों रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद जी की आवाज़ में।

रायन मनोरथ और जॉयस सुप्रसाद जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। आपके आ जाने से हो गए तेरे हो गए मैशअप बाय वानिका रामसुकू।

हो गए तेरे हो गए मैशअप अभी आप सुन रहे थे वादिका राम सुकू जी की आवाज़ में। सुनने वालों यहाँ तक आप यानी सरासा हम देखे हाँ हाँ हाँ पहले ये गीत हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a blessed day.
1: मैं तुझे छोड़।
0: Until next Sunday.

महफिल सजालो हमेशा का तरह प्रोग्राम और कार्यक्रम का शुरुआत। हमारे भी प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सरनाम देश का एक महान गायक, बैठक गाना का गुरु, उस्तादों का उस्ताद श्री राम प्रसाद राम खिलावन जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे बड़े बड़े राजा।

सुरिनाम देश का महान गायक उस्तादों का उस्ताद और बैठन गाना का महान गुरु श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी। अगला बयान सुनने को जा रही है आप सभी को एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश के मेर बकंत अल्स द फ्रोइटी फ्रॉ फ्रॉम द यार 1960-70, ook in Holland jarenlang gewoond en heel veel gezongen. Bohoti Mashur Ganewali, Amare Suriname, des West Indies, Trinidad, Tobago, Jamaica, Ustadin, Srimati, Manraji, Lechmanjike, beautiful awaz mee, ati sundar bayan. Aisa mausam ke mausam to bahut hi gambhir hai yaro, enjoy the music, sarnami sangeet.

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाले सूरीनाम देश का बैठक गाना का उस्तादी श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी। अगला बयान एक और अति सुंदर बयान है हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना, वो भी त्रांगा बैठक गाना फ्रॉम सूरीनाम। ना टूटा दूध का दांत क्या।

Shabash, Tranga Baita Gana from Suriname, na Tuta Dut Ke Daant. अगला बयान हमने की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को और एक शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को मैस्त्रो रामानंद राम गुण गाय के।

0: Шабаш, шабаш, мешур гае кемаре Суринамдиска Рамананд Джи ке мадхур аванс ме ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। अगला बयान एक जबरदस्त चटनी सॉन्ग है और गाने वाला है हमारे हॉलैंड देश का नौजवान कलाकार जो काफी नाम कमा चुका है हॉलैंड देश विनाम देश अमेरिका त्रिनिदाद टोबैगो वन एंड ओनली प्रिंस चार्मिंग शिवम राजाराम। और वो क्या कहती है कि चलो पीसे मसाला मैशअप।
1: वी ऑल नो दैट मैजिकल पाउडर दैट स्पाइस ऑफ योर

Shava Shava spise Mashala Meshabai Mashur Gaya Kamare Hollandiska Shivam Rajaram. अगला बयान आप सभी को सुनाने को जा रही है उभरती हुई कलाकारा तिफानी पूरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान सुरिनम टूर चटनी बैठक द चाय टू मिक्स सॉन्ग.

Beautiful song Panghatwa by Irfan, found in Hindustani radio पे आप चुन है यारो, जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान दोनों नैना, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनन को जा रहे हैं आप सभी को स्टीफन रघुनाथ।

शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद रूबेन पंचम जी के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी प्रेम संगीत आप सुनेंगे चल बंबई रानी।

चल बम्बई रानी प्रेम संगीत के मधुर साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं और ये भी आज का ये जो सरनामी संगीत पहला अध्याय बैठक गाना का आखिरी सॉन्ग होगा और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को पंडित रायन कल्पू जी के मधुर आवाज में। ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, सही बात है ना।

शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे सूरीनाम देश का पंडित रायन कल्पू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कि प्यार किया तो डरना क्या। अगला बयान सुनाने को जा रहे है नहीं, अभी आप तो कुछ और सुनेंगे। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो। फाउंड हिंदुस्तान रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जन्म

विशाल हीरा जी आपको सुनाने वाले थे भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, भौजी जो देखे तो क्या करे भैया पर गुस्साए। संदीप बदलू जी आपको सुनाने वाले हैं बुढ़वा का करे है हम बताए ना बतावे।

अभी आप सुन रहे थे संदीप बदलू जी की आवाज़ में बुढ़वा चिकना खोजे है। और बुढ़वा चिकना खोजे है के बाद चलिए ये गीत हम आप सभी के वास्ते पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गलियां से गलियां घूमल बदमुआ, और क्या क्या घूमे हैं आप खुद सुने हैं। दविंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में हम पेश करते हैं आजा गोरिया नवरंगिया के तरे तरे।

अभी आप सुन रहे थे अमुआ भी ने जाए, द लायन ऑफ बैठक गाना दविंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका राम सुकुल जी मैशअप के साथ।

अभी आप सुन रहे थे वारिका राम सुकुल जी की आवाज़ में एक मैशअप, और दूसरा मैशअप ये हो जाए वारिका राम सुकुल जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे एक मैशअप वारिका राम सुकुल जी की आवाज में। जरा सा हम देखे तो जॉयस शिव प्रसाद के साथ में रायन मनोरंजन जी आपको सुनाने वाले हैं आपके आ जाने से।

इट्स विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन और आपको सुनाने वाले थे जॉय शिव प्रसाद के साथ में रायन मनोरज जी और म्यूजिक दिए हैं ज्वाला जी ने। प्रोग्राम को ज़रा सा हम देखें और आगे में लेकर चलते हैं सुनने वालों श्याम सुंदर गगरी

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में, हमने पेश किया है सुनने वालों सविता सिंह जी आ रहे हैं प्रोग्राम में चटनिया।

चटनिया है सैया सिल्वर पे पीसी। अभी आप सुन रहे थे सविता सिंह जी की आवाज में। केनत सालिक आपको सुनाने वाले हैं, और वो क्या सुनाने वाले हैं, राधिका, व्हाई यू लीव एंड गो।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टिल नेक्स्ट टाइम।

जी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसान रेडियो पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार आपन दिल के बाद पियानो के पीछे बैठ के सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

साधना सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज उसे गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज, तो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

जिंदर कुमार के आवाज़ का और जिंदर कुमार का दिल के बात अभी आपने पियानो के साथ सुना। दिल के बात पियानो से सुनाएंगे आपकी बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़। मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर। दिल के बाद पियानो के साथ

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूलता प्यारी सी फूलता वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते हैं दोस्तों, दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है, तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है, और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निखिल आतन शास्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुई है, उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप चुन है हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफो तक फिर सीफो पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों, ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हाथ का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक पे जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाज़ा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज़ ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाया। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाथ का।

ओ माँ जी रे, आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोरदा के आवाज में, और साथ ही साथ लता।

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहों ने सारे पर आप चुन है।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है, एक बार फिर ख्वाब में आने को दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा। रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

इश्क प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदर ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 3 2 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों
2: गाने को है।
1: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो परमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितने गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यागनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगे। आओ नाइट के लता जी परमाश श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा

रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

नी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे। आज आप लोग को हम सिर्फ ओल्ड रात के सोहरा सफर का गीत हम आपको सुनाएंगे कि अगर जब आप सोते हैं या कुछ रिलैक्स करते हैं तो ये सब गीत आप सुनकर और इसमें अपना यानी कि खायुलिम खुद खनीतमें से ओल्ड इज गोल्ड।

मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। तो कुछ मिली जुली गीत आपको हम आज सुनातेंगे हमारे यारो। तो हम चलते हैं अकियों के झरोके की ओर। तो अकियों के झरोके में क्या होता है, आओ सुना जाए।

और नींद की चोरी हो गई रात, और रात के बोले है सपना निनिया चोरी हो गई, क्यों सूत ना पावे, इतना प्यार हो गया है कि सपने क्या, और बोले है रात के निनिया बोले वो चोरी हो गया भैया, तो इतना प्यार करना कि रात की जो निनिया है वो भी उड़ जाए। उसके बाद हम चलते हैं, एक फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है कल की आवाज, नहीं कहती हूं एंथवी नहीं कहता का ये फिल्म है, और एक हिट सॉन्ग है, फिल्म का नाम है कल की आवाज तुम्हारी, और गीत को किसने गाया है आओ देखा जाए दोस्तों। इतना बात है कि इस गीत को इस फिल्म में काम किया है अमृता सिंह और धर्मेंद्र जी काम किया है, और आओ सुना जाए ये कौन सा गीत है।

और कल की आवाज मूवी का नाम है और इस फिल्म के नाम है कल की आवाज नीघंत का ये जोंग है जो आपके लिए हमने चला दिया। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहते झलक रही है। हमारे दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। तो आपको हम बता दें तो हम चलते हैं इस गीत की ओर। मेरे दिल ने जो मांगा नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। फिल्म के नाम है रखवाला। निखती होंद एनन जीवन तक का ये गीत है और यानी कि मूवी के नाम है रखवाला। मेरे दिल ने क्या आपको दिल ने जो मांगा है उसको मिला है या नहीं मिला है, आओ सुना जाए।

और मेरे दिल ने और जो मांगा वो मिल गया, क्या आपका दिल जो मांगा है उसको क्या मिल गया है। हमारे दोस्तों, हमारा यही आशा उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है कि आपका दिल जो मांगते हैं उसको बहुत जल्द मिल जाए, इसलिए कि इस प्यार से मेरी तरफ जब देखोगे तो सब कुछ आ जाएंगे। द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका याग्निक का फिल्म चमत्कार।

और इस प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो भैया, नहीं मुझे प्यार तो जरूर हो जाएगा। टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानोल का याग्निक का फिल्म के नाम है चमती कार के बात। चलते हैं और अगला गीत के ओर, अपनी अपनी मोहब्बत की, अपने मोहब्बत को कभी ना मारो और उसे कभी कोई दुख न दो। नाइटिंगेल लता जी और किशोर दादा के आवास में इस गीत को हम चलाते हैं। मूवी का नाम है लैला, लैला और मजनू का सॉन्ग है।

और दीवाने को पत्थर से कभी मारना नहीं चाहिए, तो इस गीतों से मुझे याद होता है कि कोई ज़माना में मैं भी 16 बरिश के था। और क्या आप भी कभी 16 बरिश के थे? अगर जब कभी 16 बरिश के थे तो आपके ये गीत सुनना चाहिए और खूब ठीक से सुनना चाहिए और अपने आप को लेके चलो चलो जब तुम 16 बरिस के थे। और उस समय पे 16 बरिस के जब तुम थे तो उस जमाना में उस समय पे आप क्या थे, इस गीत से आओ सुना जाए।

और दोस्तों सलाम ही सलाम के ओर हम चलते हैं। एने तेरे नीले नीली आंखों का और ये जोंग है फिल्म के नाम, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं तो यानी जाने अनजाने नीखते होंगे नसीबंद का और पद्मा शर्मा मुझे बनाई दिन गई लता जी का ये जोंग है।

0: और तो वा ये मतवाली चाल, और इस गीत को आपनी फिल्म का नाम है पत्थर की शरम।
1: प्यारे गीत भी सुनाएंगे, तो आज लो दर्द भरी गीत आप लोग यहाँ से सुनिए।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम और चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस याद ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे, ऑफ और खबरों का हार्ट सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हेल फिल्मैन से सैन खसकाई दे, प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तब आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

तूने मेरी प्यार का दोस्तों दर्द भरी खबरों का हर सौ आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

और दोस्तों अगर ये आम की याद नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है, तो आपको खबरों का हर सॉन्ग के ओर हम जाते हैं। वफा नाराज आई।